0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6 7 2 V23।
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश।

0: क्या बात है, बड़ा शानदार गीत यार। कॉल दे बाद चलते हैं जी। हेलो सत श्री अकाल।
1: हाँ जी
0: जी जी जी,
1: मैंने बताना है कि याद आ गई थोड़ी प्लान भी।
0: हाँ जी जी जी,
1: पता की जिन्नी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, बच्चे बहुत सियाने हो गए ने।
0: हाँ जी,
1: इतने ना प्लान बी लाया, जो बच्चे नवे ने प्लान बी लिया इन्होंने।
0: हाँ जी,
1: पहला पी आर डिलीवर हों कार।
0: हाँ जी,
1: हूँ स्कूटरी से डिलीवर करते ने।
0: हाँ
1: नोट किया तुम कहते?
0: जी जी जी बिल्कुल,
1: इस कहते प्लान बी।
0: प्लान बी बिल्कुल,
1: इकॉनमी अलाउज।
0: बिल्कुल, जिथे बचे बंदे कोल पैसा है, कुछ भी है ना, प्लान बी ते बचत होनी चाहिदी है।
1: मैं तुहाडे तां प्लान दे विच ना थोड़े जे शो दे विच हिस्सा पाता अज।
0: क्या बात है सर, चार चंद लग गया। बहुत शुक्रिया सर कॉल दे लई। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। कुलविंदर जी, कुलदीप जी ते होर भी कॉल आ रही ने, आपां 2 मिनट जरूर होल्ड रखिए। साडे नाल उमरप्रीत जी एक वारी फिर ते जुड़े ने। जी उमरप्रीत जी, वेलकम बैक।
2: थैंक यू सो मच सर जी। जी सो मॉर्गेज इंश्योरेंस दी आपां गल कीती आ, कई बार आपा पेरेंट्स का नाम मॉर्गेज दे विच पाया हुंदा क्वालीफाई होने लई, उत्थे भी मेक श्योर करो कि रब ना करे जे अनफॉर्चुनेटली प्रीमेच्योर पेरेंट्स की डैथ हो जाती है, अज तां तुसीं उहनां दा नाम पवा के क्वालीफाई हो गए, कल नूं फिर दोबारा किवें क्वालीफाई होना। सो जिन्ना कु उहनां दा पोर्शन हैगा, जरूर उन्ने क दी पेरेंट्स दी इंश्योरेंस भी करवा लो नाल। या तुहाडा कोई भी क्वेश्चन है विजिटर इंश्योरेंस नूं लैके, सुपरवीजर ट्रैवल इंश्योरेंस नूं लैके, देखो तुसीं कैनेडा दे विच हो ते तुहाडे कोल हैल्थ कार्ड नहीं है, चाहे तुसीं एज ए विजिटर वीजा ते इत्थे आए हो, या तुसीं अप्लाइड स्टेटस ते हो, या तुसीं स्टूडेंट वीजे ते हो ते कंपनी तुहाडे सॉरी कॉलेज वल्लों तुहानूं नहीं इंश्योरेंस मिली हुई, या कई बार आपां वर्क परमिट ते ही हुंदे आ लेकिन आपां नूं हजे हैल्थ कार्ड नहीं इशू होया हुंदा, मेक श्योर भी थोड़ी एमरजेंसी मेडिकल इंश्योरेंस जरूर होए। मैनू अज सवेरे ही फोन आया सरबजीत जी, वो हॉस्पिटल जा चुके थे, उन्होंने मैनू फोन किया उन्होंने फ्रेंड ने कि मेरा फ्रेंड हॉस्पिटल गया जी, उसके कोल हेल्थ कार्ड है नहीं, वर्क परमिट ते आ, तो उन्होंने इंश्योरेंस कर दो, क्योंकि जो तुम कैनेडा दे विच हो जे तो थोड़ा लैंड होए नू महीने तो घट होया तो 48 आवर्स का वेटिंग पीरियड पैंदा हुंदा सिकनेस दे लई।
0: अच्छा।
2: जे तुसी महीने तो उपर तुसी कैनेडा दे विच हो, मतलब वर्क परमिट ते हो, तुसी पहले स्टूडेंट सी, उहदा मतलब थोड़ा टाइम हो चुका, तो 7 to 8 डेज का वेटिंग पीरियड पैंदा हुंदा, और इन्हां 7-8 दिनों दे विच भी जे कुछ हुंदा बाद च भी उन्होंने वो कवर नहीं करना, क्योंकि वेटिंग पीरियड का मतलब यही हुंदा। सो जे तुसी इत्थे ऑलरेडी हैगे तो मेक श्योर कि जो नहीं आ कोई हेल्थ कंडीशन तो अपने आप इंश्योर कर लो, या कोई थोड़े विजिटर आ रहे हैं या तुसी पेरेंट्स नूं सुपर वीजा से स्पॉन्सर करना, उन्हों की हेल्थ कंडीशन मैं दस दो, उन्हों का डेट ऑफ बर्थ तुसी मैसेज कर दो, मैं थोड़ा जो भी बेस्ट कोटेशन होगी मैं थोड़ा मैसेज बैक कर दूंगी, या थोड़ा कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट्स में लैके RRSP, RESP, TFSA पहला कर लेना, FHSA या रजिस्टर्ड डिसेबिलिटी सेविंग्स प्लान जिसे 90,000 तक की गवर्नमेंट ग्रांट लिए तुसी एलिजिबल हो सकते हो, जे तुसी आप स्पेशल नीड्स नाल हो या कोई बच्चा विद स्पेशल नीड्स, एज थोड़ी 49 तो घट है, तुसी कनेडियन रेजिडेंट या सिटीजन हो, तो थोड़ी डिसेबिलिटी टैक्स क्रैडिट DTC अप्रूव्ड है, तो तुसी भी 90,000 तक की गवर्नमेंट ग्रांट लिए एलिजिबल हो सकते हो। वैबसाइट है जी मेरी uchavla.com, अल्बर्टा, BC, मैनीटोबा, सस्कैचवान, नोवा स्कोशिया ते ओंटारियो, इन्हां सारियां प्रोविंसेस मैं लाइसेंसड हाँ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 647-446-1616-4416-1616। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰਬ ਜੀ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। 647-446-1616 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 647-446-1616। ਉਮਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ।
2: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ,
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।

பெருகி சோப்பை आपको अपनी आंखें चेक करवानी है, आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज, सन ग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्क में Any age, any stage. जी हाँ, आपकी स्पेशल देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450-5530 पर कॉल कीजिए। 9054562733 Alpha Optical, your vision is your business.

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटम $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने पिसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशन तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1135 416-213-1165

स्पार्क शॉप्स बनाए और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली सजावट एंड पूजा हट। 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम या अली मदद। और आपके लिए ये जो वीकेंड है बहुत ही प्यारा सा मौसम है और रक्षा बंधन का त्योहार सभी भाई बहन मना रहे हैं। सभी बहनों भाइयों को रक्षा बंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और इसी तरह भाई बहनों का प्यार दुनिया में बना रहे और उन्हें हमेशा खुशियाँ मिलती रहें, बस यही हमारी ऊपर वाले से प्रार्थना है। तो आइए इसी विचार के साथ प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम का संसार। तो अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना है तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है और दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्स में है। तो आप उनके जो राखी स्पेशल है, इस महीने की स्पेशल है, वीकली स्पेशल है, ये बने आप और फिर अपने होने के लिए आप उनको कॉल कर सकते हो। जी हाँ, तो नंबर है आपके लिए 905-799-0045। अगर आपने घर नया खरीदा है, बेसमेंट बनाई है, आपको फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर चाहिए तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, आपको बहुत बढ़िया डील्स मिलेंगी, बढ़िया प्राइस पे, बढ़िया क्वालिटी। अब अगर आपने मूव होना है तो आप एचके मूवर्स को कॉल कीजिए। जी हाँ, तो एचके मूवर्स आपके लिए मौजूद हैं, आपके लिए ब्रैम्पटन में मौजूद हैं, तो आप आज ही उनको कॉल कीजिए। कनाडा भर में मूव होने की आपकी मदद करते हैं और बहुत सारी उनकी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। 416-524-704 पे आप एचके मूवर्स को कॉल कीजिए मूव होने के लिए और कनाडा भर में आपको मदद करते हैं मूव होने के लिए। अगर आप लंदन में रहते हैं, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि मास्टर कलेक्शन डिपो अब आपके लिए गोल रोड पे खुल चुका है। आप वहां पे जाइए, अपनी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना के दे देते हैं, तो बहुत सालों का उनका तजर्बा है। तो आप mastercollisiondepot.com पर जाकर उनके बारे में और जानकारी लीजिए। लंदन में गोल रोड पे मौजूद है आपके लिए मास्टर कलेक्शन डिपो। तो अब अगर आपने किसी किस्म का भी हैमिल्टन में रहते हो, गाड़ी ट्यून अप करवानी है, विंटराइज करवानी है, उबर टैक्सी आपने सर्टिफाई करवानी है, तो आपकी मदद करते हैं योगीज ऑटो सेंटर वाले। उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं, तो आपकी कोई भी अथॉरिटीज करवानी है, कोई सर्टिफिकेशन करवानी है, तो आपकी पूरी मदद करते हैं। जी आप मिस्टर गिल को कॉल कीजिए 905-547-6464। तो योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन में डाउनटाउन में मौजूद है। तो आपके विंटराइज करवानी है, कार ऑयल चेंज करवाना है, सर्टिफिकेशन करवानी है, तो हर तरह से आपकी मदद करते हैं। तो ये हैं आपके लिए योगी ऑटो सेंटर वाले। तो अब आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनाते हैं। लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। कुमार के पत्थर मारा जाते हैं, आरती फिल्म, लता जी

0: दिया ऊपर चांदनी आई संभल संभल दरिया ऊपर चांदनी आई संभल संभल
1: इन लहरों पर मन मेरा मचल मचल
0: एक बात कहता हूँ तुमसे एक बात कहता हूँ तुमसे ना करना इनका
1: क्या
0: आ तो है सजनी ले

जी हाँ, तो उम्मीद रखती हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, गाना जरूर पसंद आया होगा। तो जो पुराने गाने थे उनका अपना ही मजा है, तो दिल एकदम खुश हो जाता है, खास करके जब सैटरडे की इवनिंग होती है और रक्षाबंधन का दिन होता है, तो कुछ इस तरह की फीलिंग बहुत अच्छी लगती है। अब आपके लिए अगर आपने फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया टीवी, किचन की गैजेट आपको एडवांस चाहिए, या फिर आपने कोई ऐसा आउटडोर फर्नीचर चाहिए, घर में बढ़िया फर्नीचर चाहिए, बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया प्राइस पे, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे मिलता है, और उनकी लोकेशन आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वास में है। तो और जानकारी के लिए, उनकी स्पेशल मंथली वीकली देखने के लिए topchoiceelectronics.com पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करिए 905-799-0045 9057990045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कीजिए। तो अब अगर आप लंदन में रहते हैं, आपकी बड़ी खुशी की खबर है लंदन ओंटारियो में, तो मास्टर कोलिजन डिपो वाले आपके लिए वो रोड पे खुल चुके हैं, वहाँ पे आपकी कार वैन ट्रक का कोलिजन का काम करवाना है, तो आप मास्टर कोलिजन डिपो पे जाइए, masterkollisiondepo.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी लीजिए, उनकी लोकेशन गोर रोड पे लंदन में मौजूद है। तो अब अगर आप मूव होना चाहते हैं, मूविंग के लिए आप कॉल कीजिएगा, जी हाँ, तो आपको कॉल करना होगा 416-524-7004 कनाडा भर में आपको मूव होने में पूरी मदद करते हैं, और फिर आपके लिए जब भी आपको मूव होना है तो बहुत सारी उनकी टीम्स हैं, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचा देते हैं। तो 416-524-7004 तो आज राखी के लिए अगर आपको मिठाइयां चाहिए, खाना लाइव कुकिंग करवाना चाहते हो, तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए क्रेडिट व्यू ब्रिटानिया पे मौजूद है, न्यूली रेनोवेटेड है, वहाँ पे जाके भी आप खा सकते हैं। और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-814-1703 तो ये है आपके लिए न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट वाले। अब अगर आपने किसी किस्म का भी आपको ट्रक रिपेयर करवानी है, तो आप बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर पे जाइए 905-632-0055 9056250055 इसी सागा में मौजूद है आपकी सेवा के लिए। तो अब अगर आपने ऑटो रिपेयर करवानी है, आपको उबर की सर्टिफिकेशन करवानी है, तो आपके लिए योगी ऑटो रिपेयर 1952 किंग स्ट्रीट पे इस पे मौजूद है, तो आप वहाँ पे जाइए, आपको बहुत बढ़िया सर्विस देंगे। और जानकारी के लिए 905-547-6464 तो आइए, ये गाना भी आपके लिए बड़ा सुंदर गाना है, नरगिस और राज कपूर के ऊपर फिल्माया गया था ये गीत चोरी चोरी फिल्म में, बहुत ही

ये जो गाना है, अगर आप उनकी आपस में जो एक्शंस, आंखों के बॉडी लैंग्वेज आप अगर देखो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो दोनों एक प्रेडिकमेंट में हैं। जैसे कि नरगिस चाहती थी कि उनसे और गहरा रिलेशन बना लें राज कपूर, लेकिन राज कपूर तो शादीशुदा फैमिली वाले थे, वो ऐसा करने वाले नहीं थे। लेकिन ये जो जिंदगी के फैसले इस तरह के होते हैं कि कभी आदमी भटक जाता है, तो फिर इमोशंस के बेस पे इस तरह के फैसले नहीं किए जा सकते। तो मेरा ख्याल है कि राज कपूर के अफेयर्स बहुत सारे चले और ही वॉज वेरी रोमांटिक एंड गुड लुकिंग आई थिंक, एंड वुमेन काइंड ऑफ फेल फॉर हिम। बट देन अगेन दिस इज ओनली इमोशंस, मोमेंटरली इमोशंस, इनको पक्का रिलेशन नहीं बनाया जा सकता कभी भी। तो आप भी जिंदगी में अगर कभी ऐसी चीज हो जाती है, बड़ी सक्सेसफुल औरतें थी ये और उनके करियर बहुत बढ़िया थे बॉलीवुड में, तो उनको भी इस तरह की जो चीज उनके अपने फीलिंग्स को कंट्रोल पे नहीं रख सके, और इस तरह से फिर बहुत सारी नाराजगियां हो जाती हैं, बहुत सा दुख दोनों तरफ होता है फिर जब कोई भी चीज सही तरीके से नहीं चल सकती, हो नहीं सकती है। और बजाय कि दोनों तरफ से हर्ट हो, इससे बेहतर हो जाते हैं कि पहले से ही अपने कदमों को रोक लें, अपने आप पर काबू होना चाहिए अपनी, क्योंकि ये इस तरह के फैसले जब इमोशंस पे किए जाते हैं, मैंने इतनी सारी जिंदगियां यहाँ पे देखी हुई या बिखरी हुई इसी वजह से, क्योंकि अगर औरत स्ट्रांग होती है घर में तो बंदा कहीं ना कहीं फंस जाता है, अगर बंदा स्ट्रांग होता है फैमिली में तो औरत कहीं ना कहीं उलझ जाती है, कहीं ना कहीं वो चक्कर चल जाता है। लेकिन कई बार ये होता है कि औरतों का जो होता है चक्कर, वो पूरी जिंदगी में चलता रहता है और कभी पता ही नहीं चलता है। इसी तरह किसी कई बंदों का भी पूरी जिंदगी चक्कर चलते रहते हैं और कभी पता नहीं चलता है। इस तरह की उनकी जो इतने उन्होंने महारत से करते हैं या जो भी कह लो, तो इस तरह की भी चीजें होती हैं। लेकिन आजकल जो है ना, बड़ा ओपननेस हो गई है, तो लोग ओपननेस में यकीन करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब कोई सब पूरी जिंदगी इस तरह जी ले फिर अखीर में पता चले तो वो बहुत और भी ज्यादा हर्टफुल होता है कि पूरा जिंदगी जिसको हमने अपना समझा था वो तो अपना है ही नहीं था। तो आइए अब रक्षाबंधन के बारे में बात करते हैं। ये एक बहन भाई का जो एक दिन बना हुआ है, ट्रेडिशन बनी हुई है, तो रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच के पवित्र प्रेम और अटूट रिश्ते को मनाने का एक प्रमुख नव भारत इंडिया का जो भारत के ट्रेडिशंस के मुताबिक ये चीज होती है। तो इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र तथा तरक्की की कामना करती है। रक्षा का वचन, भाई अपनी बहन को हर मुश्किल से बचाने का वचन देता है और उसे उपहार देता है। तो इस तरह से ये जो राखी का त्योहार है मनाया जाता है। अगर आपको मिठाइयाँ लेनी है, आपको खाना ऑर्डर करना है, क्योंकि वीकेंड में सभी बहन भाई इकट्ठे होते हैं फिर राखी मनाते हैं, तो आप समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री, आपके लिए एकदम फ्रेश सारा कुछ मिलेगा, आपको मिठाइयाँ फ्रेश मिलेंगी, क्योंकि उनकी जो टर्नओवर है ना बहुत ज़्यादा है। वैसे तो जितने भी रेस्टोरेंट है सभी की टर्नओवर बहुत होती है, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा पहले वाले ज़माने से अलग हैं कि क्यों इतना झंझट करें, बनाएं बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं। बस इस तरह से लोग बाहर से ही खाना खा लेते हैं। तो आपको अगर खाना ऑर्डर करना है तो आप जरूर समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामना हो रही है। तो अब बहुत सारे मेले हो रहे हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारे इवेंट्स हो रही हैं, बहुत सारे शोज हो रहे हैं। अभी समर का जो एंड आने वाला है, तो इसलिए बच्चे अगले हफ्ते स्कूल वापस चले जाएंगे, तो सभी तरफ से
बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर बना हुआ है, फेस्टिव एटमॉस्फेयर, तो एंजॉय कीजिएगा। और फिर मौसम भी, नेचर भी आपका साथ दे रही है कि सभी वृक्षों के रंग बदल जाएंगे, क्या बढ़िया खूबसूरत नज़ारा होगा।

0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और रक्षाबंधन आपको सभी को, सभी भाई बहनों को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। सभी को बहुत बढ़िया, आपके लिए भी बहुत बढ़िया हो, सभी को हमारी आपके लिए प्रार्थना है, दुआ है। मैं आपसे विदा लेती हूँ, हमारे हो गए बच्चे ऑब्लिगेशन है तो स्कूल जा रहे हैं, उसके बाद साथ तो मेरे को तो सभी के जिनके बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं पहली बारी, तो मैं उन पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उनके बच्चे तरक्की करें, हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, बस यही इसी दुआ के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सुवादा भला, मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा, आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर की साथ। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। ओम शांति ओम।
1: तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ।

your body, mind, and soul. आइए आपका स्वागत है हर संसार में और जुड़िए आत्मा परमात्मा केंद्र दुनिया और बाहर की दुनिया के साथ।

इस बार शब्द बनाए और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली सजावट एंड पूजा हट 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808।

संरक्षणी माता कौलिक ज्ञान प्रकाशिनी वंदे श्री कुल पूजया कुलांबा कुल रक्षिणी वेद माता जगन माता लोक माता हितैषिणी आदि शक्ति समुद्भूता ग्राही संपूर्ण जगत विश्वबंधम महाघोरम त्राही माम शरणागतम त्रैलोक्य हृदय शोभे भक्तानुग्रह कारिणी कम कुल देवी नमोस्तुते महादेव प्रियंकारी बालानां हितकारिणी कुल वृद्धि करी माता त्राही माम शरणागतम जिदग्री मंडल संभूता राज्य वैभव कारिणी प्रकटी ताम सुरेशानी वंदे त्वाम राज गौरवम त्वदीये कुले जात है त्वामेव शरणम गत है त्वत्मत्सलोहम आद्ये त्वम रक्ष रक्षा धुना पुत्रम देहि धनम देहि साम्राज्यम प्रदेहि मे सर्वदा अस्माकं कुले भूयाते मंगलानुशासनम कुलास्तकमिदं पुण्यम नित्यं यः सुप्रति पठेत् तस्य वृद्धि कुले जात है प्रसन्ना परमेश्वरी कुलदेवी स्तोत्रमिदं सुपुण्यम ललितं तथा अर्पयामि भवद्भक्त्या त्राही मां शिवगेहिनी श्री कुलदेवी स्तोत्रम्।

0: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम या अली मदद। और आपके लिए ये जो वीकेंड है बहुत ही प्यारा सा मौसम है और रक्षा बंधन का त्योहार सभी भाई बहन मना रहे हैं। सभी बहनों भाइयों को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और इसी तरह भाई बहनों का प्यार दुनिया में बना रहे और उन्हें हमेशा खुशियां मिलती रहें, बस यही हमारी ऊपर वाले से प्रार्थना है। तो आइए इसी विचार के साथ प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम का संसार। तो अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना है तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद हैं और दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्स में है। तो आप उनके जो राखी स्पेशल है, इस महीने की स्पेशल है, वीकली स्पेशल है, आप और फिर अपने होने के लिए आप उनको कॉल कर सकते हो। जी हाँ, तो नंबर है आपके लिए 905-799-0045। अगर आपने घर नया खरीदा है, बेसमेंट बनाई है, आपको फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर चाहिए तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, आपको बहुत बढ़िया डील मिलेगी, बढ़िया प्राइस पे, बढ़िया क्वालिटी। अब अगर आपने मूव होना है तो आप एचके मूवर्स को कॉल कीजिए। जी हाँ, तो एचके मूवर्स आपके लिए मौजूद हैं, आपके लिए ब्रैम्पटन में मौजूद हैं, तो आप आज ही उनको कॉल कीजिए। कनाडा भर में मूव होने की आपकी मदद करते हैं और बहुत सारी उनकी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। 416-524-4 416-524-6704 पे आप एचके मूवर्स को कॉल कीजिए मूव होने के लिए और कनाडा भर में आपको मदद करते हैं मूव होने के लिए। अगर आप लंदन में रहते हैं, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि मास्टर कलेक्शन डिपो अब आपके लिए गोर रोड पे खुल चुका है। आप वहां पे जाइए, अपनी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना के दे देते हैं, तो बहुत सालों का उनका तजर्बा है। तो आप mastercollisiondepot.com पर जाकर उनके बारे में और जानकारी लीजिए। लंदन में गोर रोड पे मौजूद है आपके लिए मास्टर कलेक्शन डिपो। तो अब अगर आपने किसी किस्म का भी हैमिल्टन में रहते हो, गाड़ी ट्यून अप करवानी है, विंटराइज करवानी है, उबर टैक्सी आपने सर्टिफाई करवानी है, तो आपकी मदद करते हैं योगीज ऑटो सेंटर वाले। उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं, तो आपकी कोई भी अथॉरिटीज करवानी है, कोई सर्टिफिकेशन करवानी है, तो आपकी पूरी मदद करते हैं। जी आप मिस्टर गिल को कॉल कीजिए 905-547-6464। तो योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन में डाउनटाउन में मौजूद है। तो आपके विंटराइज करवानी है, कार ऑयल चेंज करवाना है, सर्टिफिकेशन करवानी है, तो हर तरह से आपकी मदद करते हैं। तो ये हैं आपके लिए योगी ऑटो सेंटर वाले। तो अब आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनाते हैं। लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।
1: कुमार के ऊपर फिर आया जाते हैं ब्यूटी आरती फिल्म।

0: दरिया ऊपर चांदनी आई संभल संभल, दरिया ऊपर चांदनी आई संभल संभल,
1: इन लहरों पर मन मेरा गया मचल मचल।
0: एक बात कहता हूँ तुमसे, एक बात कहता हूँ तुमसे, ना करना इनका
1: क्या
0: आता है सजे।

जी हाँ, तो उम्मीद रखती हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, गाना जरूर पसंद आया होगा। तो जो पुराने गाने थे उनका अपना ही मजा है, तो दिल एकदम खुश हो जाता है, खास करके जब सैटरडे की इवनिंग होती है और रक्षाबंधन का दिन होता है, तो कुछ इस तरह की फीलिंग बहुत अच्छी लगती है। अब आपके लिए अगर आपने फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया टीवी, किचन की गैजेट आपको एडवांस चाहिए, या फिर आपने कोई ऐसा आउटडोर फर्नीचर चाहिए, घर में बढ़िया फर्नीचर चाहिए, बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया प्राइस पे, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे मिलता है, और उनकी लोकेशन आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वास में है। तो और जानकारी के लिए, उनकी स्पेशल मंथली वीकली देखने के लिए topchoiceelectronics.com पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करिए 905-799-0045 9057990045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कीजिए। तो अब अगर आप लंदन में रहते हैं, आपकी बड़ी खुशी की खबर है लंदन ओंटारियो में, तो मास्टर कोलिजन डिपो वाले आपके लिए गोर रोड पे खुल चुके हैं, वहाँ पे आपकी कार वैन ट्रक का कोलिजन का काम करवाना है, तो आप मास्टर कोलिजन डिपो पे जाइए, masterkollisiondepo.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी लीजिए, उनकी लोकेशन गोर रोड पे लंदन में मौजूद है। तो अब अगर आप मूव होना चाहते हैं, मूविंग के लिए आप कॉल कीजिएगा, जी हाँ, तो आपको कॉल करना होगा 416-524-7004 कनाडा भर में आपको मूव होने में पूरी मदद करते हैं, और फिर आपके लिए जब भी आपको मूव होना है तो बहुत सारी उनकी टीम्स हैं, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचा देती हैं। तो 416-524-7004 तो आज राखी के लिए अगर आपको मिठाइयां चाहिए, खाना लाइव कुकिंग करवाना चाहते हो, तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए क्रेडिट वो ब्रिटानिया पे मौजूद है, न्यूली रेनोवेटेड है, वहाँ पे जाके भी आप खा सकते हैं। और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-814-1703 तो ये है आपके लिए न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट वाले। अब अगर आपने किसी किस्म का भी आपको ट्रक रिपेयर करवानी है, तो आप बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर पे जाइए 905-625-0055 में मौजूद है आपकी सेवा के लिए। तो अब अगर आपने ऑटो रिपेयर करवानी है, आपको उबर की सर्टिफिकेशन करवानी है, तो आपके लिए योगी ऑटो रिपेयर 1952 किंग स्ट्रीट पे इस पे मौजूद है, तो आप वहाँ पे जाइए, आपको बहुत बढ़िया सर्विस देंगे। और जानकारी के लिए 905-547-6464 तो आइए, ये गाना भी आपके लिए बड़ा सुंदर गाना है, नरगिस और राज कपूर के ऊपर फिल्माया गया था ये गीत चोरी चोरी फिल्म में, फिल्म के बहुत ही

0: ये जो गाना है, अगर आप उनकी आपस में जो एक्शंस, आंखों के बॉडी लैंग्वेज आप अगर देखो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो दोनों एक प्रेडिकमेंट में हैं। जैसे कि अर्गे चाहती थी कि उनसे और गहरा रिलेशन बना लें राज कपूर, लेकिन राज कपूर तो शादीशुदा फैमिली वाले थे, वो ऐसा करने वाले नहीं थे। लेकिन ये जो जिंदगी के फैसले इस तरह के होते हैं कि कभी आदमी भटक जाता है, तो फिर इमोशंस के बेस पे इस तरह के फैसले नहीं किए जा सकते। तो मेरा ख्याल है कि राज कपूर के अफेयर्स बहुत सारे चले और ही वॉज वेरी रोमांटिक एंड गुड लुकिंग आई थिंक, एंड वुमेन काइंड ऑफ फेल फॉर हिम। बट देन अगेन दिस इज ओनली इमोशंस, मोमेंटरली इमोशंस, इनको पक्का रिलेशन नहीं बनाया जा सकता कभी भी। तो आप भी जिंदगी में अगर कभी ऐसी चीज हो जाती है, बड़ी सक्सेसफुल औरतें थी ये और उनके करियर बहुत बढ़िया थे बॉलीवुड में, तो उनको भी इस तरह की जो चीज उनके अपने फीलिंग्स को कंट्रोल पे नहीं रख सके, और इस तरह से फिर बहुत सारी नाराजगियां हो जाती हैं, बहुत सा दुख दोनों तरफ होता है। फिर जब कोई भी चीज सही तरीके से नहीं चल सकती, हो नहीं सकती है, और बजाय कि दोनों तरफ से हर्ट हो, इससे बेहतर हो जाते हैं कि पहले से ही अपने कदमों को रोक लें। अपने आप पर काबू होना चाहिए अपनी, क्योंकि ये इस तरह के फैसले जब इमोशंस पे किए जाते हैं, मैंने इतनी सारी जिंदगियां यहाँ पे देखी हुई या बिखरी हुई इसी वजह से। क्योंकि अगर औरत स्ट्रांग होती है घर में तो बंदा कहीं ना कहीं फंस जाता है, अगर बंदा स्ट्रांग होता है फैमिली में तो औरत कहीं ना कहीं उलझ जाती है, कहीं ना कहीं वो चक्कर चल जाता है। लेकिन कई बार ये होता है कि औरतों का जो होता है चक्कर, वो पूरी जिंदगी में चलता रहता है और कभी पता ही नहीं चलता है। इसी तरह किसी कई बंदों का भी पूरी जिंदगी चक्कर चलते रहते हैं और कभी पता नहीं चलता है। इस तरह की उनकी जो इतने उन्होंने महारत से करते हैं या जो भी कह लो, तो इस तरह की भी चीजें होती हैं। लेकिन आजकल जो है ना, बड़ा ओपननेस हो गई है, तो लोग ओपननेस में यकीन करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब कोई पूरी जिंदगी इस तरह जी ले, फिर अखीर में पता चले तो वो बहुत और भी ज्यादा हर्टफुल होता है कि पूरा जिंदगी जिसको हमने अपना समझा था वो तो अपना है ही नहीं था। तो आइए अब रक्षाबंधन के बारे में बात करते हैं। ये एक बहन भाई का जो एक दिन बना हुआ है, ट्रेडिशन बनी हुई है। तो रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच के पवित्र प्रेम और अटूट रिश्ते को मनाने का एक प्रमुख नव भारत इंडिया का जो भारत के ट्रेडिशंस के मुताबिक ये चीज होती है। तो इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र तथा तरक्की की कामना करती है। रक्षा का वचन, भाई अपनी बहन को हर मुश्किल से बचाने का वचन देता है और उसे उपहार देता है। तो इस तरह से ये जो राखी का त्योहार है मनाया जाता है। अगर आपको मिठाइयाँ लेनी है, आपको खाना ऑर्डर करना है, क्योंकि वीकेंड में सभी बहन भाई इकट्ठे होते हैं, फिर राखी मनाते हैं, तो आप समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री, आपके लिए एकदम फ्रेश सारा कुछ मिलेगा, आपको मिठाइयाँ फ्रेश मिलेंगी, क्योंकि उनकी जो टर्नओवर है ना बहुत ज्यादा है। वैसे तो जितने भी रेस्टोरेंट है सभी की टर्नओवर बहुत होती है, क्योंकि आजकल लोग ज्यादा पहले वाले जमाने से अलग हैं कि क्यों इतना झंझट करें, बनाएं बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं। बस इस तरह से लोग बाहर से ही खाना खा लेते हैं। तो आपको अगर खाना ऑर्डर करना है
1: दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव।
0: तो आप जरूर समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामना हो रही है। तो अब बहुत सारे मेले हो रहे हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारे इवेंट्स हो रही हैं, बहुत सारे शोज हो रहे हैं। अभी समर का जो एंड आने वाला है, तो इसलिए बच्चे अगले हफ्ते स्कूल वापस चले जाएंगे, तो सभी तरफ से बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर बना हुआ है, फेस्टिव एटमॉस्फेयर, तो एंजॉय कीजिएगा। और फिर मौसम भी, नेचर भी आपका साथ दे रही है कि सभी वृक्षों के रंग बदल जाएंगे, क्या बढ़िया खूबसूरत नज़ारा होगा।

0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और रक्षाबंधन आपको सभी को, सभी भाई बहनों को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। सभी को बहुत बढ़िया, आपके लिए भी बहुत बढ़िया हो। सभी हमारी आपके लिए प्रार्थना है, दुआ है। आपसे विदा लेती हूँ। हमारे वीकेंड है तो स्कूल जा रहे हैं, उसके बाद 7 सितम्बर को तो सभी के, जिनके बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं पहली बारी, तो मैं उन पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उनके बच्चे तरक्की करें, हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, बस यही, इसी दुआ के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सुवादा भला। मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा, आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर की साथ। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। ओम शांति ओम।
1: तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहोगी तो तुमसे क्या कहूँ।

0: से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें, और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
1: प्यार हुंदा फुल्ला तो मनुख सोहणिया।

अष्टपदिया महला चौथा। घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, तिस पह आप विचाई। दर्शन हर देखण कैताई, कृपा करहे ता सतगुर मिलहै।

तिस पह आप विचारी दर्शन हर दिखन कहताई कृपा करहि तब सतगुर मिलह हर हर नाम त्याई रहा जी सुख देह तन तुझे आराधी दुख भी तुझे त्याई जे भुख देहे तैत ही राजा दुख विच सुख मनाई तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई अखा फेरी पानी ढोवा जो देव सो खाई।

अखी काड तरी चरना तले, सब धरती फिर मत पाई। जे पास बहाल है ता तुझ है अरादी, जे मार कढ़े पीत आई।

नानक विचारा भया दीवाना हर तो दर्शन कहताई चखड़ चागी मीहो वरसै पी गुर देखन जाई समुंद सागर होवै बहुखारा गुर सिख लंग गुर पह जाई।

0: तिस पहे आप विचाई दर्शन हर देखण कै ताई कृपा करहे ता सतगुर मिल है हर हर नाम त्याई।
1: स्वागत जी फिर तो पंजाबी लहरा रेडियो प्रोग्राम दे नाल तुसी इस वेले जो बने हुए हो एतवार दा दिन थानू सारिआं नूं जी बहुत बहुत मुबारक होवे। सो 30 अगस्त आ चुकी है ते देखदिआं ही देखदिआं अगस्त दा महीना भी लंघ चलिआ ते सितंबर दे विच जदों दाखल होणा ते फिर जो फॉल दा आगमन जो पतझड़ दा आगमन जो है उह होणा ते उस दे नाल फिर लगना कि मौसम दे विच भी काफ़ी तब्दीलियां आनियां ने। पर फिलहाल जो है मौसम इस हफ्ते जो है वह ठीक रहेगा चंगा रहेगा। खैर अज थोड़ी बहुती ठंडक जरूर महसूस होनी है। इस वेले 20 डिग्री तापमान ते मीह दी पूरी तैयारी है। दिन भर अज मीह दे 80% तो वध आसार ने ते बदलवाई जिथे रहनी है दोपहर तक मीह दे पूरे आसार ने ते मौसम दे विच जो टेंपरेचर दे विच जो है वह हुण नालों सवेर नालों थोड़ी घट वध ही तब्दीली आनी है। सो 20-22 डिग्री दे लागे ही अज दा तापमान जो है यह रहेगा ते इसे तरह कल दा मौसम होना पर उस तो बाद टेंपरेचर जो ने वह 29 डिग्री तक भी इस हफ्ते जाण दी पूरी उम्मीद है। सो सितंबर दा जो पहला हफ्ता भी होण वाला सो यह भी कह सकते हैं कि गर्मी इस वेले भी जो है वह पूरी रहेगी। हालांकि जो शुरुआत सितंबर दी है वह मीह दे नाल जो है बिल्कुल रहनी है। सो 6:39 ते जी अज दा जो दिन है यह चढ़ना है हौली हौली जो सूरज दीआं किरणां दे नाल चानण जो है थोड़े चिर दे विच होवेगा। दिन की शुरुआत जो असी कर रहे हैं सो सब तो पहला जी मन दे विच उस परमात्मा दा जरूर शुकराना करिए जिसने यह सोहना दिन सानू दिखाया सानू जो समा दिता है कि यह समा जो है असी बतीत कर सकीए चंगीआं यादां नू अपने जो जिंदगी दी लड़ी दे विच परो सकीए। सो जी एतवार दा दिन ते पूरा हफ्ता जो है जो सारे हफ्ते जो काम कार किते हुंदे ने जो थकावट महसूस असी करदे हाँ सो अज दे दिन ही मौका हुंदा कि अपना आराम जो है फरमाई ते नाल ही फिर चलो घर दे कम्मां दी तैयारी भी पूरी हुंदी है। सो उम्मीद करदे हाँ जी अज दा थोड़ा जो दिन है यह पूरा सफल रहेगा ते जो सोचिया ठाणिया है जो अज दे दिन दी प्लानिंग है वह सारिया दी संपूर्ण जरूर होवे जी। सो पंजाबी लहरा रेडियो प्रोग्राम दे नाल इस वेले जो तुसी बने हुए हो बहुत ही प्यारी सवेर है ते इस सवेर दे विच साडे नाल तुसी गल जरूर कर सकते हो नंबर 905-673-3337 905-673-3337 जी साडे स्टूडियो दे नंबर ने ते नाल ही थानू असी नंबर यह भी नोट करवा दिए जी कि फोन राही तुसी इस प्रोग्राम दे नाल जुड़ सकते हो ते फोन राही कॉल करके नंबर तुसी प्रोग्राम नू सुन सकते हो नंबर 416-477-2040 416-477-2040 यह नंबर है कैनेडा दे लई। कैनेडा दे विच किसी भी प्रोविंस दे विच तुसी ये नंबर डायल करके सुन सकते हो जी प्रोग्राम। US दे विच भी नंबर 641-741-0860 जी तुसी नोट रखना है 641-741-0860 जी यह US दा नंबर है इस नंबर नू भी नोट कर लो जेकर थोड़ा जो समा है इस वेले दा 6 to 8 दा US दे विच हुंदा ते 641-741-0860 जी नोट करना। इस दे नाल ही जी मैं थोनू नोट करवा देवां कि दुनिया भर दे विच किते भी तुसी प्रोग्राम नू लाइव सुन सकते हो जी साडी मोबाइल ऐप पंजाबी लहरां दे नाल ते बस इंटरनेट चाहिदा थोड़े फोन ते ऐप पाई होवे ते तुसी प्रोग्राम नू फिर जरूर सुन सकते हो। सो प्रोग्राम पंजाबी लहरां जी 2 घंटे जो थोड़े नाल AM 530 दियां तरंगा ते बिल्कुल रहेगा। तो सवेर वेले जिथे परमात्मा का नाम लईदा, जिथे एक पॉजिटिव मन दे नाल जो शुरुआत दिन की करीदी है, तो उत्थे फिर जो अपडेट जो है खबरां नू लैके इधर उधर की वापर रहा है, की सानू पता होना चाहिए। खास तौर पर रमेश होशियारपुरी जी पासों जो खबरां दी सार असीं लैने आ, सो 2 घंटे का समा साडा थोड़ा जो है इस दे विच तय है। सो 6:30 बजे जी अज दियां जो खबरां दी शुरुआत रमेश होशियारपुरी जी दे नाल असीं करांगे, ते उस तो बाद 7 बजे तो बाद जी थोड़ियां कॉल्स जो ने, थोड़े जो विचार ने, तुसीं कोई टिप्पणी अपनी फिर उन्हां खबरां ते जदों रखना चाहुंदे हो ते फिर तुसी प्रोग्राम दे विच अपनी शमूलियत जरूर पा सकोगे। सो 1 घंटा जो है वो थोड़ियां कॉल्स नूं भी दवांगे। नंबर 905-673-3337 905-673-3337 जी तुसी नोट बिल्कुल रखना जी। ते इस दे नाल ही जी मैं यह भी नोट थानूं जरूर करवा देवां जी कि किसी भी प्रोविंस दे विच या फिर चलो एक शहर तो दूसरे शहर ही क्यों ना तुसी जेकर मूव होना, एच के मूवर्स नूं तुसी संपर्क जरूर कर सकते हो जी। नंबर 416-524-6704 जी यह नंबर है एच के मूवर्स वालियां दा। सो पंजाबी लहरां दे ऑफिशियल मूवर्स ने, प्रोफेशनली अपना काम करते ने। जो असी चाहते हाँ कि साडा जो समान है जो इन्नी मेहनत दे नाल असी तैयार किया हों एक जगह, तो फिर जो थां बदलनी होंगी है तो दूजी थां असी जो लैके जाना हों, असी चाहते हाँ कि वह समान जो है वह उस तरह असी उत्थे वरतीए तो पूरी संभाल दे नाल शिफ्ट होवे। सो फिर काम प्रोफेशनली ही करवाना चाहिए। तो एच के मूवर्स नूं तुसी संपर्क इस दे विच जरूर कर सकते हो जी। नंबर है 416-524-6704 416-524-6704 जी यह नंबर तुसी नोट बिल्कुल रखना जी। तो मैं इस दे नाल ही थानू नंबर यह भी जरूर नोट करवा देवां जी, जिथे खास तौर पर जो अपने ट्रक ड्राइवर वीर ने, ओनर ऑपरेटर्स जो ने, खास तौर पर उन्होंने लिए यह संदेश है मैंडी गिल जी वालों एबल इंश्योरेंस तो, जी तुसी अपने ट्रक की इंश्योरेंस करवानी है या फिर कार की करवानी है, होम बिजनेस इंश्योरेंस के लिए भी इन्हों के पास बहुत अच्छे प्लान्स ने, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स ने। तो तुसी अपनी कॉल मैंडी गिल जी नू करनी है, नंबर 647-929-95-09 6479-299-9509 जी ये नंबर तुसी मैंडी गिल जी दे लई जरूर नोट करो। नाल ही नंबर चलो इन्हां दा एक होर साडे कोल है, नंबर 647-883-1899 6478-83-1899 जी ये नंबर भी तुसी मैंडी गिल जी दे लई डायल जरूर कर सकते हो, तां जो कि गल होवे कार दी, गल होवे ट्रक दी इंश्योरेंस दी, घर दी इंश्योरेंस तुसी पुछनी है या फिर बिजनेस इंश्योरेंस। सो इना सारे एरियाज दे विच इह जी थानू एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर दवाणगे। सो प्रोग्राम पंजाबी लहरां रेडियो जी नंबर 905-673-3337 905-673-3337 जी तुसी बिल्कुल नोट रखो जी। ते थोड़ा जिहा मैं जरूर इस दा भी जिक्र कर देवां जी, जिथे गल अपनी लेक ओंटारियो दी पिछले कई दिनों तो जो चल रही है, सो प्रीमियर डग फोर्ड ने कल इस दे विच एक नवा लेक ओंटारियो दा साइन भी जो है यह इंट्रोड्यूस किया, जिथे US प्रेजिडेंट डोनल्ड ट्रंप जो इस नू लेक अमेरिका बनाना चाहते ने, उत्थे साइन जो लेक ओंटारियो दा नवा जो लाया जा रहा है उस दे विच एक पोर्शन जो है वह ऐड जरूर किया गया कि नाओ एंड ऑलवेज कि लेक ओंटारियो दा नाँ जो है वह हुण भी लेक ओंटारियो है, तो हमेशा जो है अगे ਲੇਕ ਓਨਟੈਰੀਓ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਯੂ ਐੱਸ ਵੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਾਕ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਰਿਮਾਰਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਮਿਸਿੰਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ $5 million ਤੱਕ ਜੋ ਫੰਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 121 ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਜੋ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 32 ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਓਵਰਆਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ 600 ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕਨਫਰਮਡ ਨੇ ਕਿ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਭਰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਖਬਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿੰਮਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ। ਸੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ।

0: राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
0: राजधानी राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: गार्निशमेंट, पावर ऑफ सेल नोटिस, बैंक वालों पैसे दी मंग, उड़े ही सानू कॉल करो, फिर तो अनु कोई नहीं कर सकेगा तंग। कर्जा माफ कराओ, 100% मानसिक शांति पाओ, कलेक्शन कॉलों तो छुटकारा, बिना ब्याज निकियां निकियां किश्तां। कॉल करो कनाडा कंज्यूमर क्रेडिट असिस्टेंस 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दांगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए, देन सडनली तुसी ए कमर्शियल सुनदे हो।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग। हरजिंदर गिल ते छड़ दवो, तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 G Media Group।

0: हां जी हरमन जी।
1: आए हाय हाले ताई कोई फर्क नहीं पिया।
0: फर्क जे पै गया दिलां विच नी फिर तू रोवेंगी।
2: मैं क्यों रोऊंगी।
0: ए फर्क नहीं पैना चाहिदा फिर के दे कपड़े धोवेंगी।
1: दिल दा कपड़ा ना किस बन।
0: मैं तो रंग दी गल करदा भी भाई चंगा साबण वरत्या करो।
1: हाँ।
0: माड़े साबण रंग उड़ जांदा।
1: ओ जेड़ा गुरप्रीत संधा वाले वरतदा छोकरा मारका ओ नहीं वरतना।
0: हाँ जी।
1: अच्छा जी ये कपड़िया दे रंग उड़े दा ही नतीजा कि अज इदा दा हो गया।
0: हाँ जी
1: हाँ जी
0: हाँ जी।
1: चलो मैं तुहानू फिर अज एक गल सुनानी आ।
0: दसो।
1: कहंदे कि जेड़ियां बादल सरकार दियां नीतियां ना।
0: बादल सरकार दियां नीतियां पहला मैनू ए दसो भी है केड़ियां।
1: चलो जेड़ियां भी आ।
0: ना इदां थोड़ा हुंदा जेड़ियां केड़ियां दा की मतलब है।
1: देखो उना ने
0: समझाओ ना पहला।
1: की समझावा
0: भाई साडे पल्ले ता पाओ।
1: की पाओ
0: भी केड़ियां नीतियां ने
1: उना ने जो क्या आ पहला ओ गल ता सुन ला। तू
0: सुन लांगे पहला गल ता दसो नीति केड़ी।
1: मेनू नहीं पता।
0: अच्छा
1: हुण ठीक है।
0: हां जी
1: उन्हां दीयां जिन्नियां भी नीतियां ने
0: जी
1: उन्हां दा प्रचार पता हुण कौन करूगा।
0: कौन करू।
1: सनी देओल।
0: सनी लियोन।
1: सनी लियोन नी सनी देओल।
0: अच्छा
1: अपना वो जड़ा नलके आला
0: धर्मेंद्र भाई दा मुंडा
1: वड्डे आला।
0: वड्डे आला।
1: हां ते यार
0: वैसे मेनू पता लग गया भी सनी देओल कोलों क्यों मशहूरी करौनी है।
1: क्यों।
0: ओ इस करके कहंदे भी पंजाब च पानी दा थल्ले चले गए जी।
1: अच्छा
0: नलके पानी कढ देनी नाले नलके पटा लांगे नाले प्रचार करा लेंगे जी।
1: एक होर भी है लिस्ट च।
0: ओदी लिस्ट दा फेसना हो पहला गाना सुनना ही नहीं तां मैं रो पैणा जी।